हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: अरे तू सत्यानाश।
1: रूप तुला नस्ताना, एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना। रूप तुला नस्ताना, एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना। कौन हीरोइन तुझला कर लगा अक्का।
2: अब असं काय करता, अजून एक चांस द्या ना।

0: गुजर जाए।
1: कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

अगली पंक्ति गाने के पहले आनंद धाम परिसर में रहने वाली आसपास के 1 किलोमीटर के परिसर में रहने वाली बहनों से केवल इतना पूछना चाहता हूं, माँ हुलसा ने अपने बेटे को प्रतिक्रमण सीखने के लिए भेजा है और आपको तो शायद प्रतिक्रमण आता भी होगा, नहीं आता होगा तो सुनने के लिए तो आ ही सकते हैं। भाइयों का प्रतिक्रमण रोज होता है आनंद धाम पर और बहनों का प्रतिक्रमण होता नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो आनंद धाम के परिसर में रहने वाली बहने केवल एक सवाल का जवाब दे, यहां प्रतिक्रमण करोगे कि स्वाध्याय सदन में प्रतिक्रमण करोगे, करोंगे कि नहीं करोगे पूछता ही नहीं, मैं कहाँ करना पसंद करोगे, यहां करना पसंद करोगे या स्वाध्याय भवन के हॉल में करना पसंद करोगे।

स्वाध्याय भवन के हॉल में करना पसंद करोगे। ये आवाज केवल माया तय की आई, बाकी सबको लगता है कि अब की भी आई है, बाकी सबको नहीं करना है क्या प्रतिक्रमण? चौमासे में प्रतिक्रमण गुरुदेव के दरबार में रोज होना ही चाहिए। कल शाम को कुछ बहने प्रतिक्रमण के लिए आई थी, उन्होंने देखा, उनको प्रतिक्रमण आता नहीं था, लेकिन प्रतिक्रमण करने की उनकी प्रबलतम भावना थी। उन्होंने स्वाध्याय सदन में देखा, बड़े पंडाल में देखा और उनका मुंह उतर गया है कि कोई प्रतिक्रमण करने वाला सुनाने वाला नहीं है। और अच्छा लगता है कि अपने गुरुदेव के दरबार में से कोई नाराज होकर के चला जाए, हेलो नहीं ना। तो जिनको जिनको प्रतिक्रमण आता है उन्होंने तो कंपल्सरी आना है, और जिनको प्रतिक्रमण नहीं आता है उन्होंने सुनने के लिए तो आना ही आना है। ध्यान में रहेगा ना, पक्का ना? हेलो नहीं, आपके ओर से रिप्लाई नहीं आया, आप कच्चा पक्का? जो आ सकते हो तो बोलो, जो नहीं आ सकते हो मत बोलो। जो आ सकते हैं वो बोले, बोलिए तो आवाज तो लगाओ ना थोड़ा सा। कहां पर, कौन से हॉल में? भक्त निवास के हॉल में होता है। तो ठीक है, मुझे पता नहीं था, मुझे यहां दिखा नहीं, इसलिए मैंने कहा भक्त निवास के हॉल में प्रतिक्रमण जारी है तो भक्त निवास के हॉल में करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिक्रमण होना जरूरी है और उसकी जानकारी भी सबको होनी जरूरी है कि प्रतिक्रमण कहाँ हो रहा है। तो प्रतिक्रमण कहाँ होगा? भक्त निवास के हॉल में प्रतिक्रमण होगा। आप जरूर वहां पहुंचने का ध्यान रखेंगे।

परम सदैव पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। स्वास्थ्य की अनुकूलता न होते हुए भी गुरु भक्ति के इस माहौल में स्वयं को समर्पित करने के लिए और गुरु भक्ति में आए हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए पधारे भी श्रद्धास्पद पूज्य प्रवर्तक सिंह जी के चरणों में हम सभी की ओर से वंदना। श्री संत वृंद, विदेशी महासती वृंद, अपने प्रभु का, अपने गुरु का जन्मोत्सव मनाने के लिए उल्लास और उमंग से समर्पित श्रद्धालु श्रोतागण सामयिक के पचकान गुरुदेव ने मार्ग शीर्ष शुक्ला नौमी विक्रम संवत 2017 में लिए। विक्रम सौ 70 में लिया, सॉरी 70 में लिए। यदि विश्लेषण की बात करनी हो तो 1912 में लिए। उस पल से उनकी सामयिक शुरू हुई। और समय का जो सूत्र होता है बिल्कुल एक दो मिनट के लिए मैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बोल रहा हूं, वापस इन बॉक्स आ जाऊंगा। जैनियों ने अपने कई सिद्धांतों को केवल अपने ही मुट्ठी में बंद करके रखा, उस कारण से प्रभु का शासन विश्वव्यापी न हो पाया। उसमें से एक मैत्री पर्व, फॉरगिवनेस क्षमापना पर्व, और दूसरी सामयिक की साधना। जितने भी टॉप मोस्ट सुपर दुनिया की इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, और उनके जो फर्स्ट क्लास के, जो फर्स्ट क्लास के सीईओ है, उनके लिए रूटीन चर्या दिनचर्या को आप चेक करोगे तो उनके लिए कंपलसरी सामयिक है। कंपलसरी सामयिक है। उन्हें कहा जाता है कि वर्किंग शुरू करने के पहले टोटली डिस्कनेक्ट होकर के, टोटली डिस्कनेक्ट होकर के आपने एक रूम में बैठना है, नो फोन, नो कंपनी का कोई चिंतन दिमाग में, न परिवार का चिंतन, केवल शांत होकर के, टोटली डिस्कनेक्ट होकर के ये बैठने की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। काश हम सब उनके पास समय की साधना का प्रारूप पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कितनी बड़ी कंपनी का संचालन करते समय, और बिल्कुल आपको सभी को पता है, इसे एक एग्जांपल दे दूं, आपने देखा होगा जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं और चुनाव के प्रचार की धूम चलती है, जिस दिन आखिरी सभा हो जाती है उस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में जाते हैं। जहां उनकी आखिरी सभा होती है वहीं से वो एकांत में चले जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट। कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी और किसी गुफा में जाकर के बैठते हैं। ये सामयिक है, ये पौषध है।
जैन आगम ये कहता है कि जिस समय भी अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने अनुभव से जिस समस्या का समाधान पाया नहीं जा सकता था, उसके लिए भरत चक्रवर्ती, अभय कुमार, श्री कृष्ण वासुदेव पोषण का तेला लेकर के बैठते थे। और जिस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पोषण का तेला लिया, पोषण पूरा होते होते ही उस समस्या का समाधान हो जाता था। आज ये भी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। आप समय का पाठ पढ़ते हो लेकिन समय का रहस्य नहीं जानते हो। काया के दोष, मन की बात में बात करो, काया के दोष, चलासन, कुआसन, विमासन, 48 मिनट तक आसन चलित नहीं हो और आसन चलित होता है, नीचे का पांव ऊपर, ऊपर का पांव नीचे आता है तो सामयिक में काया का दोष लगता है। कैसे बैठा जाए सामयिक में कि एफर्ट्स लगे नहीं बैठने में, एफर्टलेस ऐसे बैठना कि जैसे बॉडी रेस्ट कर रही है। जिनका जन्मोत्सव हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं, जगा रहे हैं अपने अंतर में उनको, संवत्सरी के दिन 8 बजे आकर के चौरंग पर विराजते थे। सिंहासन नहीं होता था, चौकी होती थी, चौकी जिस पर ना हाथ टेकने को जगह होती थी ना पीठ टेकने की व्यवस्था होती थी। और सुबह 8 बजे आकर के विराजते और 4 बजे आखिरी व्यक्ति का दर्शन होने के बाद अपना आसन खोलते थे। और यदि 8 घंटे आपको बैठा दिया जाए तो उसके बाद आपका पांव सीधा करने के लिए किसी पहलवान को ही बुलाना पड़ेगा। दस मिनट के बाद पांव नहीं सोए, हेलो, ऐसे लोगों को पुरस्कार की व्यवस्था की जा सकती है। और ताजुब के बाद कि 8 घंटे में उनका पांव सोता नहीं था, जकड़ता नहीं था, मुंगिया आती नहीं, बधिर होता नहीं, और उठते तो ऐसे उठते कि मानो अभी बैठे हो। थोड़ी मेरी पोल खोलो, मैं भी आपके जैसे ही था, ऐसा ही चुलबुल चुलबुल चुलबुल चुलबुल। एक दिन गुरुदेव ने मुझे कहा कि आसन स्थिर होना चाहिए, मैंने कहा होता नहीं है। और गुरुदेव ने बहुत प्रेम से कहा, मैं कैसे बैठता हूं, उससे मेरी दीक्षा नहीं हुई थी और दिमाग में केवल पिताजी का दिया हुआ वाक्य था। मैंने कहा आप भगवान हो, आप भगवान हो। और गुरुदेव ने कहा इसके साथ भगवान का संबंध नहीं है,
इसके साथ बैठने की कला है। कैसे बैठना, कि शरीर में समता आ जाए। समय का मीनिंग क्या है? संभाव बाद में, पहले काया संतुलन में आ जाए, काया बैलेंस में आ जाए। और जब बैलेंस में आ जाता है तो बोझ चला जाता है, और जब बैलेंस नहीं रहता है तो बोझ आकर के कोलैप्स हो जाता है। ये टू व्हीलर गाड़ी है। कैसी है? टू व्हीलर गाड़ी है। और टू व्हीलर की गाड़ी चलने में ही बैलेंस रहता है, बिना गति के टू व्हीलर में बैलेंस आता नहीं। और चलते समय बैलेंस नहीं आए तो गाड़ी चलती नहीं, गिर जाती है। वैसी टू व्हीलर है, बॉडी टू व्हीलर है, लेफ्ट और राइट, इसका बैलेंस होना चाहिए। मज्जतों में जरा भी, जिसको निर्जरा करनी है वो सेंटर में आ जाता है। सेंटर में मतलब रीढ़ की हड्डी में आ जाता है। अभी तो आपके कांटे हैं, इलेक्ट्रिक कांटे आ गए, पहले वो पुराने कांटे होते थे, है ना? और उसका कांटा बैलेंस में आ गया, ओके। वैसे ही तन है, वैसा ही वचन है, और वैसा ही मन है। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ये दोनों बैलेंस में आने चाहिए। अरे दोनों बैलेंस में आ गए, तन बैलेंस में आ गया, वचन योग बैलेंस में आ गया, तो साइकोसोमेटिक डिसीज हो ही नहीं सकता, ऐसा साइंस कह रहा है। परमात्मा तो कहकर गई, सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामी। सावज्ञ योग के स्पंदन, योग कहते स्पंदन को, योग कहते वाइब्रेशन को, योग कहते कंपन को, प्रकंपन। कंपन तो होंगे, जिनके कंपन रुक जाते हैं वो मोक्ष में जाते हैं। कहां जाते हैं? एक नैनो सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? एक नैनो सेकंड के लिए यदि पूरे कार्बन शरीर के, तेजस शरीर के, औदारिक शरीर के, मन वचन काया के कंपन रुक गए, मोक्ष हो जाता है। उसको शैलीशीकरण कहते हैं। और अपने तन में, अपने मन में, अपने प्राणों में पाप के स्पंदन में होने देना 48 मिनट के लिए, उसको समय कहते हैं। और 48 मिनट के लिए तुम्हारे शरीर में, पहले शरीर की बात, शरीर में दुख की अनुभूति नहीं हुई, पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई, कहीं दर्द न हो, कहीं अकड़न नहीं हो, कहीं जकड़न नहीं हो, कहीं अनकंफर्ट फील नहीं हो, तो शरीर में निगेटिव वाइब्रेशन होते नहीं। ध्यान में रखना। आप कहोगे महाराज साहब आराम कुर्सी मिल जाए ना, इजी चेयर मिल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट चेयर मिल जाए और उस पर बैठा दो
तो हमारे शरीर में बिल्कुल कंफर्ट हो जाएगा और तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी गलत फहमी है। करोड़ों रुपए का रिसर्च कर करके चेयर्स बनती जा रही है कि बॉडी को कंफर्ट हो जाए, और उनकी अपनी मार्केटिंग चलती है। मैंने कल भी बच्चों के क्लास में बात करी थी। अभी 3 दिन पहले पेपर में एक रिपोर्ट आई थी कि 30 मिनट तक कोई कंटिन्यू बैठा रहे तो उसको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती। हेलो, क्या क्या रिसर्च कर रहे हो? और पहली रिपोर्ट थी कि कोई 1 घंटे तक भी आगे कंटिन्यू बैठा रह जाए तो उसको हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट, ये सब हो जाएगा। और आप लोग पढ़ लेते हैं उसको, अरे साइंटिस्ट के बेटे नहीं बैठनो। लेकिन ध्यान में रखिए, उन्होंने कौन से लोगों पर प्रयोग करे हैं? जो कंफर्ट चेयर पर बैठते हैं उन पर रिसर्च किया है, उनका रिसर्च किस पर है? वो कहां बैठते हैं? यस, आप कंफर्ट चेयर पर बैठोगे तो कैंसर हो गई होगा, आई एग्री विद देम। लेकिन यदि तीर्थंकर महावीर का आसन लगा करके बैठोगे, यदि गुरुदेव का आसन लगा करके बैठोगे, तो ना बेली फैट होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना हार्ट प्रॉब्लम होगा। आपको तो और कोई प्रमाण खोजने की जरूरत ही नहीं ना। लंबी से लंबी सिटिंग गुरुदेव की थी और उसमें से एक भी प्रॉब्लम उनको नहीं था। मैं जब भी तुम्हारे रिसर्च रिपोर्ट आते हैं ना, उनको पढ़ता हूं और गुरुदेव की तरफ देखता हूं, और मुझे पता चलता कि नहीं, जो रिपोर्ट है ये भ्रमित कर रही है, मिसगाइड कर रही है। आपको तो इतना भ्रमित किया जा रहा है, इतना भ्रमित किया जा रहा है। तीर्थंकर महावीर ने कहा, जितने कम एटम लोगे उतना कम का डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, जितने कम बार खाओगे उतना तुम्हारा पेट स्वस्थ रहेगा। और वो हॉस्पिटल चलाने के लिए वो तुमको सिखाते हैं कि 2-2 घंटे से खाते रहो। यस, और जब से 2-2 घंटे से फीडिंग करना शुरू हो गया, बच्चों में भी डायबिटीज शुरू हो गई। सिंपल सिद्धांत है, अब उसमें नहीं जाता हूं मैं, केवल अभी सामयिक पर बात करता हूं। कैसे बैठा जाए, 48 मिनट तक कैसे बैठा जाए कि बॉडी में कहीं पर भी निगेटिव स्पंदन नहीं हो। जहां दुख है वहां निगेटिव स्पंदन, जहां पेन वहां निगेटिव वाइब्रेशन। पेन है इसका मतलब असाता का उदय है, असाता का वेदन है, और असाता के वेदन में असाता का ही बंद होता है। दुख की अनुभूति में दुख को ही खींचा जाता है। दुखी दुखान में अनुवट ही। तीर्थंकर महावीर ने आचारंग सूत्र में कहा कि दुखी व्यक्ति दुख में ही घूमते रहता है। तो सबसे पहले शरीर को दुख मुक्त करना, रोग मुक्त नहीं कह रहा हूं। हेलो, क्या कहा?
दुख मुक्त, रोग मुक्त नहीं, दुख मुक्त शरीर होना चाहिए, दुख की संवेदना शरीर में नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए समय का विधान किया गया, और उसके लिए कहा गया काया के दोष टालो। समय के दोष कितने हैं? बोलो बोलो बोलो बोलो, 32 कितने हैं? 32। काया के कितने हैं? जय हो प्रभु महावीर की, जय हो प्रभु महावीर की। पहले कहीं से 10 आए, कहीं से 12 आए, मैंने तो केवल चेक करने के लिए पूछा, क्योंकि मोमबत्ती लगा करके बैठने वाले को तो सामयिक पारते समय बोला ही होगा, रोज बोलते नहीं बोलते, और फिर भी पूछा तो बोले 10 12 10 12, यही असेंबली शुरू हो गई। परेशान मत हो ना, प्यास लगी, प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, और सामने दूषित पानी और दूषित आहार है। हेलो, कौन कौन पिएगा? कौन कौन पिएगा? क्यों क्यों बोलो ना? दूषित है कि दूषित पानी प्यास बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा पता नहीं, बीमार जरूर करेगा। तो दूषित समय क्या करेगी? दूषित तो समय क्या करेगी?

0: आपकी सभा में वो योग्यता चंगड़ियां बैठी हुई होगी, है ना। उसने कई बार बोला भी है आप लोगों के साथ थे कि 1993 का चतुर्मास इचलगंज में था, प्रवर्तक सिंह जी का। उस चतुर्मास में मैंने इन लोगों को प्रैक्टिकली सामायिक सिखाई। कैसी सामायिक सिखाई? प्रैक्टिकली सामायिक सिखाई, और सामायिक सिखाने के लिए 3 महीने लगे। कितने महीने? 3 महीने लगे। कैसे खड़े रहना 48 मिनट कि कंबर दुखे नहीं, बैठने की ट्रेनिंग। उसके बाद वचन योग की ट्रेनिंग, उसके बाद मनोयोग की ट्रेनिंग। ये समय क्योंकि गुरुदेव वैसे करते थे, और मुझे लगता है कि समय के सूत्र तो याद है, लेकिन समय का ट्रांसलेशन भी कहीं को पता होगा, लेकिन समय का ट्रांसलेशन मतलब अर्थ नहीं है। सुहू में ही नंग संचालिन, सुहू में ही खेल संचालिन, सुहू में ही बिट संचालिन, सूक्ष्म संचालन किसका? अंग का। सुहू में अंग संचालिन कितना सूक्ष्म? केवल ब्लड का जो फ्लो चल रहा है, जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहे, उतना ही संचालन। सुहू में ही खेल संचाल ही, खेल संचाल ही मीन्स ये पूरी जो अपने रिसेप्टरी सिस्टम है उसका भी संचालन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सूक्ष्म होना चाहिए। सुहू में ही दिट्टी संचाल ही, आंख का भी संचालन कैसे होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए, उतने का ही आधार है। तसोत्तरी करने नाम मेरी आत्मा को उत्कृष्ट करने के लिए, मेरे शरीर को उत्कृष्ट करने के लिए, मेरे वचन योग को उत्कृष्ट करने के लिए, मेरे मन योग को उत्कृष्ट करने के लिए, मेरे प्राण को उत्कृष्ट करने के लिए। प्रायश्चित करने नाम, जो पाप मेरे से हुआ है, जो गलतियां मेरे से हुई है, उसको जलाने के लिए। उसको छिन्न भिन्न करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। प्रायश्चित करने नाम, रिसो ही करने नाम, अंदर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। विसल्ली करने नाम, मन में जो गलत फहमियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिटर्न गिफ्ट की तमन्ना है, हेलो ध्यान में रखना। जो भी अठाई कर रहे हैं, जिन भी परिवार में तपस्या गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही, ध्यान में रखना। रिटर्न गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं, आनंद जन्मोत्सव में कोई परिवार जो अठाई कर रहा है, चाहे मास्कमन कर रहा हो, किसी को भी अपने अंगन में भावा का कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं है। किसी को भी अलग से भोजन कराने की परमिशन नहीं है। बाबू सेठ कान खोलने सुन लीजिए, नहीं तो बाद में के लिए मैं सुनियो कोनी। मेरी बहू सोला करी मार साहब को तुक तो करनो पड़ी लाना। ये तपस्या गुरुदेव के आंगन की है, जो भी कौतुक होगा गुरुदेव के ही आंगन में होगा। न देन होगा न लेन होगा, न पीहर से कुछ आएगा न ससुराल से कुछ आएगा, और जो भी आएगा उनको क्या देना, दे दो बोलना उधर गुरुदेव के चरणों में। ये तपस्या है और किसके नाम से, किसके भाव में है? हाँ, ये भक्ति में की हुई तपस्या है। और आप ध्यान में रखना उसके पीछे का साइंस क्या है। भक्ति में तपस्या करी है गुरु कृपा पाने के लिए, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। और उसके समय में यदि तुमने कुछ भी लिया, कुछ भी उद्योग किया, तो कृपा मिलने वाली नहीं है। एक समय में गाड़ी एक ही स्टेशन पर जाती है। हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। या तो तुम्हारे शो में तुम्हारी तपस्या जाएगी, या गुरु भगवंत के साथ जुड़ने में तुम्हारी तपस्या जाएगी, या तो सोशल में जाएगी या स्पिरिचुअल में जाएगी। सोशल में गई हुई तपस्या स्पिरिचुअल में आती ही नहीं है। नो आडंबर, भावा कहाँ होगी? यहीं पर होगी। 12 तारीख को भावा होगी, यहीं पर होगी। मुझे आए थे पूछने के लिए, मास्क मन करिए, सगड़ा ने बुलावना पड़े ना, 1,000-1,500 लोगों ने पहली बार कर रही है। मैंने कहा तू 1,000-1,500 बुलाएगा, मैं यहां 25,000 बुला रहा हूं। कितने? 25,000। नो आरंभ समारंभ, नो आडंबर। क्या चाहिए आपको? गुरु कृपा चाहिए कि आडंबर चाहिए? अच्छी तरह से सुन लेना। जो जो प्लानिंग करी उसी लाना। आज बोसराय नहीं जाऊ, जो कई प्लानिंग हो गई उसी ला, कई प्लानिंग चाल रही उसी ला। जिनकी हो गई बोसरा दे जो, जिनको करनी है वो करने का दरवाजा खोलना ही मत। पावानम कमानम निगाह में ठाई ठामी का उसकम, मेरे पाप कर्मों का निर्घातन करने के लिए मैं कायसर करता हूं। करेमी भंते सामायम सावज्यम जोगम पचक्कामी, मैं सामायिक करता हूं और सावध योग का दरवाजा बंद करता हूं। इसको सामायिक कहते हैं। और एक सामायिक में क्या सामर्थ्य है, एक सामायिक में क्या सामर्थ्य है? कर्म सिद्धांत को झूठा ठहराने का सामर्थ्य किसी में है? किसको? कर्म सिद्धांत को असत्य सिद्ध करने का सामर्थ्य किसी में है? तो सामायिक में कि कर्म का सिद्धांत है, जिसा बांधे उसका भोगना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत क्या है? जिसे बांधे वैसे भोगने पड़ेंगे। और समय कहते हैं जैसे बांधे वैसे भोगूंगा नहीं, बिना भोगे ही उनको चकना चूरा कर दूंगा, उसको समय कहते हैं। और केवल स्वयं के ही नहीं, एक सामायिक में क्या सामर्थ्य है? कहानी पूरी नहीं सुनाता हूं, केवल रेफरेंस देकर के आगे बढ़ रहा हूं। राजा श्रेणी के नरक गति के बंधन तोड़ने थे। राजा श्रेणी को नरक में जाना की इच्छा नहीं थी, थकी भी कोनी मैंने मालूम है, पर टिकट कुन कुन निकालने रखे वो कि नहीं मालूम को नहीं। राजा श्रेणी ने टिकट पहले रिजर्वेशन कर लिया नरक का। और कर्म का सिद्धांत है एक बार आयुष्य कर्म का रिजर्वेशन हुआ कि कैंसल होता, यस, बाकी सारे रिजर्वेशन कैंसल हो सकते, लेकिन आयुष्य कर्म का एक बार रिजर्वेशन किया कि कैंसल होता नहीं है। और गया है राजा सैनिक, उसको पता है कि मेरे आयुष्य कर्म का रिजर्वेशन हो चुका है, उसको यह भी पता है कि रिजर्वेशन कैंसल होता नहीं है। इसके बावजूद वो तीर्थंकर को जाकर के पूछता है, मैं आपका भगत हूं, मुझे तो अपने एक रास्ता बताना ही चाहिए, आप जो कहोगे मैं करूंगा, पर मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करा दो। और कर्म सिद्धांत कहता है कि रिजर्वेशन कैंसिल होता नहीं। और दूसरा धर्म का सिद्धांत याद रखना, तीर्थंकर किसी को समझाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते, तीर्थंकर किसी को बहलाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। वो कोई प्रवीण ऋषि जी नहीं है कि थाने थोड़ा सा आटने उटने घुमाने के लिए चासरी देने बात करी रहा, वे तीर्थंकर है। वो वही बोलते हैं जो 100% सत्य है, उसमें कोई उनको अलंकार बनाने नहीं होते कि उसमें खोट डाल करके अलंकार बनाए, वो तो केवल शुद्ध सोना ही देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलंकार देते हैं। और अलंकार का मीनिंग पता है आपको, अलंकार का मीनिंग है सोना 100% शुद्ध नहीं है। बराबर है कि वो, हाँ थाने पूछ लो ना, बिना खोट डाले अलंकार बनता नहीं है, खोट डालनी पड़ती है। फूल को सजाना नहीं पड़ता और पत्थर को सजाए बिना सुंदर दिखता, वो शुद्ध सोना है, उसमें कोई असत्य का सवाल नहीं। और उसने पूछा कि मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए, और तीर्थंकर महावीर ने उसको बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए, बड़ी ईजी उपाय बताए। राजा श्रेणी को लगा ये तो यू यू यू कर लूंगा, बोले तेरे दादी को मेरे दर्शन करा दे। किसको, दादी को दर्शन करा दे। बोले इसमें क्या, अभी जा कर ले आता। गया दादी के पास, कहा दादी को कि मैंने जवानी में गलती करी, नरक गति का रिजर्वेशन किया, लेकिन मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करने का एक उपाय है, तुम भगवान महावीर के दर्शन कर ले। ए पागल मूर्ख, भाग यहां से, काय का नरक एन काय का स्वर्ग, काय का महावीर एन काय का क्या है, मैं कोई तीर्थंकर को मानते नहीं, कोई मैं भगवान महावीर को मानते नहीं, मैं कोई उनके दर्शन करूंगी। राजा सैनिक ने तो माथा पकड़ा होगा, अब समझाए किसको, बच्चे को समझाया जा सकता, दादा दादी को, जल्दी बोलो, दादा तो बोल रहे नहीं समझा जा सके। अरे महाराज सामने तो बैठने बोलो कि मां सब थे समझा लो तो दादा भी समझ जाएगा। राजा सैनिक ने प्रयास किया, घुमा फिरा करके दादी को दर्शन करा दो, घुमाने के बहाने लेकर गया रथ में बैठा करके, और रथ घुमाते घुमाते घुमाते जिधर महावीर थे उधर लेकर गया, और मां को दादी को कहा दादी दादी दादी दादी दादी देख सामने भगवान महावीर, और उसने दादी ने वो आंख उठाने के बजाय हाथ उठा दिए और आंखें फोड़ ली। राजा सैनिक तो ठिकाने पर ले गए, और बहुत सारी लंबी कहानी नहीं करता, घड़ी की तरफ देख रहा, आखिरी का उपाय बताया, पुण्य श्रावक की एक सामायिक परचेस कर ले, कितनी, एक सामायिक परचेस कर ले। यदि उसने पुण्य श्रावक ने तुझे एक सामायिक वाइब्रेशन दे दिए, एक सामायिक की एनर्जी दे दी, एक सामायिक का पुण्य दे दिया, तो तेरे नरक गति का रिजर्वेशन कैंसिल हो सकता है। वो दे पाता नहीं दे पाता उसकी चर्चा नहीं, लेकिन महावीर ने कहा कि तेरी एक सामयिक दूसरे के भी नरक गति के बंधन तोड़ने में समर्थ है। यदि आयुष्य कर्म के रिजर्वेशन को कैंसिल करने का सामर्थ्य है, तो बाकी सात कर्मों की तो चर्चा ही फालतू की है। और अनंत चालीसा का गान आप लोगों ने किया है, अनंत चालीसा का गान आप लोगों ने किया है, अरे पंचम काल के प्रभाव को, पंचम काल के प्रभाव को, अवसर्पिनी काल के प्रभाव को उस समय के साधक ने चेंज करके रख दिया। सपना नहीं देखा जा सकता था कि स्थानकवासी समाज का संगठन होगा। सदियों से चले ही संप्रदाय के झगड़े मिट करके कोई एक मंच पर आ सकेगा, उसके पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किए, कॉन्फ्रेंस ने प्रयास किए। अजमेर में 1933 में बृहद साधु सम्मेलन हुआ, लेकिन ढाक के बाद तीन के तीन ही रह गए। बड़े बड़े धुरंधर आचार्य आए, संत इकट्ठा हुए और संत संवाद नहीं कर सके, विवाद करते रह गए। सॉरी, उन सारे पूज्यवरों की क्षमा मांगते हुए भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। संत वो होता है जो संवाद की कला जानता है, जो संवाद की कला नहीं जानता है वो संत हो ही नहीं सकता। जिनको जो लगता है लगने दीजिए, गुरुदेव का जन्मोत्सव चला है और बिन पगारी फुल अधिकारी। एक बार पट्टे पर बैठे कि सैलरी कुछ नहीं है लेकिन बोलने का अधिकार पूरा है। जो संवाद नहीं कर सके, जो डायलॉग नहीं कर सके, जो संभाषण नहीं कर सके, जो सुसंवाद नहीं कर सके, जो समस्या का समाधान, रिलेशन की समस्या का समाधान बातचीत से नहीं निकाल सके, वो ना संत है, ना श्रावक है, ना सन्यत्री है। जिसका भरोसा इस बात पर है कि झगड़ करके ही समाधान होता है, नथिंग। और कैसे समता योगी गुरुदेव हुए कि पूरे इतिहास को पलट करके रख दिया है, श्रमण संघ का गठन करके बताया है। और केवल गठन ही नहीं किया, केवल दिया जलाया ही नहीं, दिया बुझने भी नहीं दिया। आप सभी जानते हो, इस दिए की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पंक्ति का दिया, लालटेन का दिया जलाना आसान है, जलाए रखना चैलेंज का काम है। और 28 साल तक, कितने साल तक, 28 साल तक अपने अस्तित्व से, अपने वक्तृत्व से, अपने व्यक्तिमत्व से श्रमण संघ का ऐसा संचालन करके बताया कि लोग दांतों तले उंगली दबाते रह गए। अरे, चार दो घर की बहुएं आती घर में, उनको प्रेम से रखते रहते सास की सास टूट जाती है। थाका जायारा दो भाई, उन दो भाई ने एक घर में, एक चौका में, एक छत में रखता रखता थाकी। हेलो, कितनी बार इन माप के मन में आता, एकत्र रहो तो ठीक रहो तो। और इसलिए अभी तो ये लोग जो है, एक भी नको माथा ने ताना चनको। एक बार बेंगलुरु में गर्भ संस्कार का शिविर ले रहा था, रेसिडेंशियल शिविर था, कपल शिविर था, और शिविर में आया एक कपल, और कपल के साथ बात कर रहा था। और श्रीमान जी ने कहा, मुझे आकर के पूछा, बोले महाराज साहब, मैं बाप नहीं बना तो क्या फर्क पड़ना है, मैं बाप नहीं बना तो क्या फर्क पड़ना है। मैंने कहा, इतना ही सोच ले, तेरे बाप ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता। हेलो, तेरे बाप ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता। समझ रही मेरी बात को, मैं आ रहा हूं। तो ऐसी सामयिक उन्होंने करी कि न केवल स्वयं के जीवन को शुद्ध किया, एक ऐसा संघ बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि एक मंच पर सबको ला करके रखा, एक सूत्र धारा में, एक धारा में, एक सूत्र में सब बिखरे हुए मोतियों की माला बनाई। आग्रह आप लोगों से, आग्रह आप लोगों से, रास्ता बना नहीं सकते हो, रास्ता बना नहीं सकते हो तो कम से कम इतना पाप तो भी मत करो कि बना हुआ रास्ता उखाड़ दो। अरे झोपड़ी किसी को बांध करके नहीं रह सकते हो तो कम से कम बनी हुई झोपड़ी तो जलाओ मत। ध्यान से सुनना और बिल्कुल सजग रहना। ये संघ बनाया है, एकता का संघ बनाया, संगठन का संघ बनाया है, अरे संगठन नहीं कर सकते हो तो कम से कम चुपचाप बैठे रहो, गुरुदेव के बनाए हुए संगठन को तोड़ने का पाप तो भी मत करो। ये क्या चल रहा है, पूरी जिंदगी जी संगठन को बनाने के लिए मेरे गुरुदेव ने लगाई। और तुम्हारे घर में एक बहू आती है और बहू के पीछे तुम नए नए खेल खेलने शुरू करते हो। अरे बहू को बुलाया घर की परंपरा चलाने के लिए कि उसकी परंपरा तुम्हारे घर में चलाने के लिए? बहू किस लिए? पीहर ससुराल में लाने के लिए कि ससुराल को आगे चलाने के लिए? बोलो जल्दी से। यस, ध्यान में रखना है, एक गुरुदेव की पुण्य भूमि है। इस पुण्य भूमि पर किसी ने संप्रदाय का बीज बोने का प्रयास किया तो उसको मेरे गुरुदेव के बनाए हुए संघ को तोड़ने का महापाप लगेगा। महामोहनीय कर्म का बंध करता है वो जीव जो संघ समाज में फूट डालता है। और सबको पता है कि मैं कानाफूसी करता नहीं, मैंने जो भी करना है, जो भी बोलना है, डंके की चोट बोलना है। वो दादा भाऊ भाऊ भाऊ करने का काम महाराष्ट्र प्रवर्तक से के पास है, मैं थाने भाऊ भाऊ करने वालों को नहीं।
1: हेलो,
0: वो ऐसा बोल नहीं सकते और मैं उनके जैसा बोल नहीं सकता, बिल्कुल क्लियर गणित थे। हम दोनों ही एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं। हाँ, स्कूल एक ही है, कृपा का हाथ भी दोनों पर एक ही है, पर आखिर पानी एक होकर के भी फल तो वैसा ही लगेगा ना जैसा बीज है। फल कैसा लगेगा? बीज जैसा लगेगा, पानी जैसा फल नहीं लगता। उनका बीज वैसा है, मेरा बीज ऐसा है, तुम्हारा बीज कैसा है? हेलो, लेकिन हम दोनों के बीच में एक बात पक्की है, बोलने की बात अलग होगी, तरीका अलग होगा, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि गुरुदेव का ये संघ, गुरुदेव की पुण्य भूमि संप्रदाय के जहर से दूषित नहीं होनी चाहिए। और जितनी बहनें यहां पर बैठी हुई है, मुझे 13 तारीख के पहले जिस एरिया में तुम रहते हो, जहां तुम्हारे 15-20 घर हैं, 20-25 बच्चे हैं, वहां गुरुदेव की पाठशाला शुरू करने की जिम्मेदारी आपकी है, तुम्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है, पाठशाला का संचालन कैसे करना है उसकी जिम्मेदारी सिखाने की जिम्मेदारी तोबिन ऋषि की है और लेकिन चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे केवल जो जो पाठशाला का संचालन करना चाहते हैं, नहीं नए लोग कौन चाहिए मुझे? मुझे फ्रेश माल चाहिए। जो पाठशाला चलाते उनको मैं नहीं सिखाऊंगा, जो पाठशाला चलाते उनको मैं नहीं सिखाऊंगा। जो पाठशाला चलाते नहीं है लेकिन गुरुदेव के भक्ति में जिनको पाठशाला चलानी है, चाहे भाई हो चाहे बहने हो, दोनों को मैं आमंत्रण देता हूं, विदाउट चार्जेस तुम्हारे क्लास लूंगा। लेकिन चाहिए मुझे, हेलो कौन चाहिए? फ्रेश माल चाहिए। कैसा माल चाहिए? फ्रेश माल चाहिए। ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है, चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यही गुरुदेव के जन्मोत्सव पर एक ही संकल्प लेकर के उठना है कि गुरुदेव की इस पुण्य भूमि में संप्रदाय का पाप, बोलो जल्दी से वाक्य पूरा करो, वाक्य पूरा करो, गुरुदेव के पुण्य भूमि में संप्रदाय का पाप, बोलो बोलो चोर से बोलिए, गुरुदेव के पुण्य भूमि में तुम्हारे और मेरे रहते हुए संप्रदाय का पाप होता है तो तुम्हारी और मेरे जिंदगी को धिक्कार है। तो तेजसो कामी, ये भक्ति फालतू की है यदि तुम्हारे और मेरे रहते हुए या कोई संप्रदाय का बीच पनपता है तो।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: महाराष्ट्र शासनातील निवृत्त माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी लिहिलेल्या आम्ही अधिकारी झालो या पुस्तकात विविध क्षेत्रातील यशस्वी अधिकाऱ्यांच्या जीवन कथा आणि यशोगाथा वाचायला मिळतात। या पुस्तकातील निवडक लेखांचं अभिवाचन ऐकूयात रेडिओ नगर 90.4 FM वरील नगरचे अंतरंग या कार्यक्रमात सोमवार आणि बुधवारी सकाळी 9 वाजता RJ कोमल सोबत। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।